0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस.

क्यों थक रहे हो?

0: खाना खत्म पैसा हजाम।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: अनमैच्ड चार्म, किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी,
3: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
2: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी, यानी ऋषि कपूर। आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ऑलिव पर।
4: बाहर से

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Yeah. Wanna feel that?

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
1: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: हाय, मैं हूँ सोहाली खान and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: I'm the number one, Radio Olive.
5: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: ब्रांड चार्म, किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी।
1: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
0: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी यानी ऋषि कपूर।
2: राधा बोल।
0: आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ऑलिव पर।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: cool song.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मदुराती।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मदुराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: किसी से प्यार किया?
2: Unmatched charm, killer dance moves और full on energy.
3: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
2: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी यानी ऋषि कपूर।
4: राधा बोल।
2: आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ओलिव पर।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive, Gio Binda.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 जियो बिंदास।
3: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस,

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास,
2: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: अनमैच्ड चार्म, किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी,
4: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
3: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी यानी ऋषि कपूर।
5: राधा बोल।
3: आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ओलिव पर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है
0: cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Hello to all the listeners of Radio Olive

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: अनमैच्ड चार्म, किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी,
3: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
2: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी यानी ऋषि कपूर। आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ऑलिव।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा, कतर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhur.

आज मेरा दिल ना आपसे बस एक ही सवाल पूछने का हो रहा है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, और खुशी क्यों ना हो। आज जो है वीकेंड जो है, आप सुबह लेट उठे हो, मजा तो आ रहा होगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसुश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ, और बहुत सारी अपडेट्स जो है टेक्नोलॉजी को लेकर वो मैं आ गई हूँ, फैक्ट्स लेकर आ गई हूँ जो आपको अमेज ही कर देंगे, आपको इतना मजा आएगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सो बस वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग गानों के साथ जो है इंजॉय कीजिए द टेक शो आपकी कसुश के साथ। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो और कहते रहो जियो पिंदा। Yes.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए और डू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए और डू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: ECU

अगर आपने अपनी शॉपिंग के दौरान एक स्ट्रॉबेरी को अपने हाथ में उठाया है ना, तो यानी आप इंटरनेट को भी अपनी मुट्ठी में करने का बल रखते हो, शक्ति रखते हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो में आपका स्वागत है, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें ना, तो हर रोज कुछ नया इन्वेंशन होता रहता है, और किस तरीके से आपके डेटा को जो है लाइटर बनाया जाए और हल्का बनाया जाए और स्टोरेज बढ़ा दी जाए, इसकी कोशिश होती रहती है। लेकिन फिलहाल इंटरनेट का वेट ना एक स्ट्रॉबेरी के बराबर है। फिजिसिस्ट ने ना कैलकुलेट किया है कि इंटरनेट पर कंटिन्यूस फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का टोटल वेट ना मुश्किल से 50 ग्राम है, यानी एक स्ट्रॉबेरी के बराबर। तो अगली बार जब इंटरनेट यूज करें या स्ट्रॉबेरी की शॉपिंग करें, तो दोनों में रिलेशन जो है वो समझ जाना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो.
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
3: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
4: all that you need. TECH.
5: The Tech Show. Tech Show.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

स्कूल में ना मेरा नाम आयजा था, डबल ए वाई जेड ए एच, एंड इसे ना बहुत सारे लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, एंड जो प्रोनाउंस कर भी पाते थे वो लिख नहीं पाते थे, तो अक्सर मेरा नाम आयशा हो जाया करता था। वेलकम टू यू 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूं आपकी कशिश और आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूं, जहां पर टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब आप ये बोलेंगे कि यार कशिश, आपका नाम जो है लोग अक्सर गलत लिख दिया करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गूगल का नाम भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ जी, वही गूगल जिसे आप रात दिन इस्तेमाल करते हो आपकी डाउट्स को दूर करने के लिए, क्वेरीज जो है वो दूर करने के लिए। सो द गूगल का असली नाम जो है वो गूगल रखा गया था। गूगल का मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरोज, लेकिन डोमेन रजिस्टर करते वक्त स्पेलिंग की गलती हो गई थी और गूगल टाइप हो गया था, तो फाउंडर्स ने उसे वैसे ही रहने दिया। यस, कई बार जो है गलती को गलती जैसे रहने दिया जाए तो ही बढ़िया होता है। देखिए हमें वरना कितना गूगल हो जाता। सो आई होप आपको ये फैक्ट जो अच्छा लगा हो। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाले गाने का वक्त हो गया है, सो वॉल्यूम बढ़ाकर इस गाने को एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
3: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
2: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
3: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
4: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
5: J-E-C-A.

कोई भी वेबसाइट खोलो और वो आपसे बोलता है ना कि इसमें ट्रैफिक लाइट्स चुनो, इसमें जो है बस कहां-कहां दिख रही है फोटो में, ये जो है चूज करो और हमें बताओ कि आप रोबोट नहीं हो। ब्रो अगर मैं रोबोट होती तो मैं क्या अभी एक वेबसाइट पे यू नो वो व्हील घुमा के 10% 20% डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रही होती, सीरियसली। वैसे ये जो आपसे ब्लॉग्स जो है वो चूज कराए जाते हैं इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा वाला कारण है, रीजन है। हां जी वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कसोशन शो आपके लिए ले आई हूं द टेक शो, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब कैप्चा भरने से ना आप गूगल को ट्रेन कर रहे हो, यस आप एक्चुअल में जब ये बॉक्सेस को चूज करते हो तो आप गूगल को ट्रेन कर रहे हो। तो जब भी आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लाइट क्रॉसवॉक ये सब सिलेक्ट करते हो ना और प्रूव करते हो कि आप एक रोबोट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, तब आप इनडायरेक्टली गूगल को सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एआई मॉडल्स की इमेज रिकॉग्निशन के डाटा के लिए जो है ट्रेन कर रहे होते। तो बेसिकली आप कभी गूगल से सीखते हो और गूगल कभी कभी आपसे सीखता है, यही तो है, मतलब यही म्यूचुअल बेनिफिट वाली जो चीज़ है ये चल रही है। वैसे जो है अगली बार जब वेबसाइट जो है खोलें कोई और ऐसा आपसे बोले कि यार रोबोट नहीं हो प्रूव कराओ, तो जो है आप ये समझिएगा कि देखिए आप गूगल को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं हूँ आपकी कोशिश, एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर द टेक शो, एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ऑरिडू।

0: क्या आपके घर वाले भी आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने से पहले 40 बार सोचते हैं? तो आप अकेले नहीं है मेरे दोस्त, मैं भी आपके जैसी ही हूँ। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कसूर संशो, आपके लिए ले आई हूँ द टेक शो, जहाँ पर बातचीत हो रही है टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती और मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे किसी भी लॉन्ग ड्राइव वाले ट्रिप पे जो है बिल्कुल नहीं लेके जाते थे। हम रोड ट्रिप्स तो करते थे लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि मुझे जो है मोशन सिकनेस हो जाती है, मुझे जो है अजीब सा लगने लग जाता है, हैवीनेस लगने लग जाती है, सर दुखने लग जाता है द मोमेंट मैं जो है किसी लंबे ट्रैवल के लिए अपनी कार में बैठती हूँ। लेकिन अब गूगल के लेटेस्ट OS अपडेट में दो नए ऐसे फीचर्स आए हैं जिसके वजह से आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो पहले फीचर के बारे में जो है हम अभी बात करते हैं, सेकंड वाले के बारे में थोड़ी देर से करेंगे। सो मोशन असिस्ट आ गया है, जो एक विजुअल बबल वाला सिस्टम है, जो गाड़ी में आप फ़ोन देखते हो ना तो उस टाइम पे होने वाली उल्टी और चक्कर की जो प्रॉब्लम है ये कम होती है। यानी अब आप अपने फ़ोन पे रील्स देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ तक कि पढ़ाई भी कर सकते हो, एंड आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी, आपका सिर गोल गोल नहीं घूमेगा, आप इंजॉय कर पाओगे। यार देखो लाइफ कितनी चेंज होती जा रही है ना, कितना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी मोशन सिकनेस वाले इंसान ने जो है सोचा होगा कि आज तो मैं जो है टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़कर एक नया इन्वेंशन करके ही रहूंगा, और उसने किया। देखिए इसीलिए ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बबल सोचते रहना चाहिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशा।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल, नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
3: 106.3 Radio Olive, Jio Bindas.
4: G-E-C-A.

कल ना मुझे अपने फोन की सिम बदलनी थी, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड से जो है सिम इजेक्टर टूल मांगा कि वो जो छोटी सी पिन होती है जिससे सिम निकालते हैं वो दे दो। उसने अपना फ्रिज खोला और फ्रिज से वो टूल निकाला। जब मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है इस टूल को रखने की, तो बोला कि यार यहाँ पे ना सेफ रहता है, मुझे याद रहता है कि यहाँ पर मैंने रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्पेसिफिक जगहों पे रखते हैं ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें गुम ना जाएं, बिकॉज अक्सर मिसप्लेस हो जाती हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे मस्ती के मज़े के तड़के के साथ हम टेक्नोलॉजी की बातचीत जो है वो कर रहे हैं। अब कितना अच्छा होता ना अगर जनरली हम अपने फ़ोन को बोल देते कि यार मैंने ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट जो है वो इस शेल्फ में रखा हुआ है, इसे याद रखना, और जब भी मुझे ढूंढना हो तो बस मैं अपने फ़ोन से पूछूं कि यार ये वाली चीज़ जो है मैंने अपना पासपोर्ट कहाँ रखा है। हाँ जी, तो अब गूगल का जो लेटेस्ट OS अपडेट आया है ना, उसके हिसाब से फाइंड हब प्लस जेमिनाई को जब भी आप बोलोगे ना कि याद रखना मेरा ये सामान जो है यहाँ रखा है, तो वो सच में अपनी मेमोरी में फीड करके रखेगा। एंड आप जब भी उससे पूछोगे ना कि जेमिनाई मैंने अपनी ये वाली चीज़ कहाँ रखी, वो आपको जेन्युइनली बताएगा। सो देखिए, जिनके भी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर थी, अब आपके पास बहाने नहीं है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: किया
1: अनमैच्ड चार्म किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी
2: सोचेंगे तुम्हें प्यार
1: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी यानी ऋषि कपूर
2: राधा बोल
1: आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ऑलिव पर

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से.
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें.
1: एक्सपीरियंस मोर विद ऑरिडू.
3: जे ए सी एच
4: टेक शो.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.
3: जबरदस्त

हम ना अक्सर मीम बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो लोग नेटवर्क ना मिलने पर एयरप्लेन मोड ऑन करके फिर ऑफ करके फिर ऑन करके जो है देखते हैं, लेकिन वो लोग सही करते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूं आपकी कशिश और आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, वो लोग जो नेटवर्क ना मिलने पर सिग्नल ना मिलने पर एयरप्लेन मोड ऑन करके जो है फिर ऑफ करते हैं, वो लोग बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सच में 10 सेकंड के लिए अपना एयरप्लेन मोड ऑन करके फिर उसे ऑफ करें तो आपके सबसे पास वाले टावर पे जो है आप कनेक्टेड हो जाते हो, तो बेटर नेटवर्क आपको मिलने लग जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको जो है नेटवर्क ना मिल रहा हो और आपका कोई दोस्त ये वाला मूव पुल करे तो उस पर हंसने के बजाय आप भी यही करना, तो आपका नेटवर्क भी जो है बढ़ के आएगा। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: जी ए सी ए।

तो जी आपका और हमारा वक्त साथ में यही समाप्त होता है. नहीं नहीं नहीं नहीं, कल आऊंगी वापस. वेलकम जी, गुड इवनिंग. 106.3 रेडियो आलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश शराब. मेरे साथ द टेक शो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है. तो मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, एंड इंस्टाग्राम पर जाकर रेडियो ऑलिव को फॉलो कर लीजिएगा. बल्कि सिर्फ इंस्टाग्राम क्यों, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर रेडियो ऑलिव को फॉलो कीजिए. हम बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं. 3311063 इज आर व्हाट्सएप वाला नंबर, सो इस पर भी आकर आप मैसेजेस जो है वो हमें कर सकते हैं. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल. टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: गानों के साथ यह हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश.
3: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा.
2: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से.
3: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं.
4: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा, कतर.
5: रेडी
6: टू लर्न,
5: टू प्ले,
6: टू ग्रो.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए.

यू नो, फ्राइडे की सुबह में एक बहुत अजीब सी सॉफ्टनेस होती है, वही घर, वही चाय, वही ट्रैफिक, वही दुनिया, लेकिन मूड कुछ और होता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि संडे से हम अपने अलार्म सुनते सुनते इतने थक जाते हैं कि शुक्रवार आते आते तक हमें लगता है कि बस फ्राइडे को आंख खुलती है तो दिमाग बोलता है कि आज जल्दी उठ भी गए तो क्या टेंशन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन नहीं है, एक लार्ज स्टडी में रिसर्चर्स ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा है कि लोग फ्राइडे और वीकेंड के आसपास जनरली बेटर मूड रिपोर्ट करते हैं। यानी कैलेंडर पर एक दिन बदलता है और हमारी इमोशनल स्टेट भी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। कतर में तो फ्राइडे सैटरडे का वीकेंड है, तो फ्राइडे प्रैक्टिकली एक मिनी फेस्टिवल जैसा हो जाता है। आज किसी को कहीं जाना है, किसी को फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना था, किसी को पूरे दिन के बाद एक काम करना था, और कुछ लोगों का तो एक ही प्लान है कि बस देखेंगे। लेकिन मुझे फ्राइडे की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या लगती है? फ्राइडे हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी ना सिर्फ डेडलाइंस का नाम नहीं होती। सो आई फील कि फ्राइडे सैटरडे इज ऑल अबाउट फॉर यू। आपके लिए फ्राइडे का सबसे अच्छा फीलिंग क्या है? लेट ब्रेकफास्ट, फैमिली टाइम, आउटिंग, या वो सुकून की बिना अलार्म वाली मॉर्निंग? सो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेमनी एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

सोचिए दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में वीकेंड का मतलब अलग है। कहीं संडे स्लो मॉर्निंग का दिन है तो कहीं सैटरडे शॉपिंग का, और कतर में फ्राइडे और सैटरडे वीकली वीकेंड का हिस्सा है। लेकिन फ्राइडे की आइडेंटिटी सिर्फ छुट्टी से नहीं बनती। फ्राइडे जो है वो ट्रेडिशनली कम्युनिटी और गैदरिंग का दिन भी रहा है। आपने देखा होगा फैमिली के साथ वक्त बिताना, रिलेटिव का मिलना, लंच, सोशल गैदरिंग्स, ये सब, यानी एक ऐसा दिन जहाँ इंडिविजुअल रूटीन थोड़ा सा साइड में हो जाता है और कम्युनिटी सेंटर स्टेज पर आ जाता है। और शायद इसी वजह से कतर में फ्राइडे की एक अलग रिदम महसूस होती है। सुबह थोड़ा सा सुकून, दोपहर में फैमिली, शाम में दोस्त और रात को एक बढ़िया सी आउटिंग। और मुझे लगता है कि मॉडर्न लाइफ में इसका एक ब्यूटीफुल लेसन है। हमने अपनी वीकडेज को इतना इंडिविजुअल बना दिया है, लैपटॉप मेरा, मीटिंग मेरी, डेडलाइंस मेरी, फोन मेरा, लेकिन एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जहां हम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज जब फ्राइडे एंजॉय कर रहे हो, आई नो आप ड्राइव करके कहीं जा रहे होगे या कुछ प्लान बन रहा होगा, सो एक छोटी सी चीज नोटिस करेगा कि आपका फ्राइडे ज्यादा अच्छा कब लगता है आपको, जब आप अकेले टाइम स्पेंड करते हो या जब घर बाहर जाता है पूरे लोगों के साथ, मतलब पूरे लोग जब साथ में मिलते हैं। सो रेडियो ऑलिव पर व्हाट्सएप करके बताइए फ्राइडे आपके लिए मी डे है या फैमिली डे है। 3311063, मतलब फैमिली की जगह फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। नंबर इज सेम, 3311063, एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

Yes, you are listening Happy Weekends on Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम आपको बता ही चुकी हूँ. वीकेंड का हैप्पी होना बिल्कुल लाजमी है. भाई एक छोटी सी मेमोरी टेस्ट करते हैं आपका. आपको बचपन का कोई रैंडम फ्राइडे या सैटरडे याद है? शायद एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगी, लेकिन याद होगा टीवी पर कोई फेवरेट कार्टून आता होगा, घर में कुछ स्पेशल बनता होगा, कजन्स आए होते होंगे, या फिर क्रिकेट खेला होगा किसी वीकेंड पे, या शाम को साइकिल लेकर बाहर निकलने का मौका मिलता होगा. यू नो, हर फैमिली का अपना एक अलग रिचुअल होता है कि भाई इस फ्राइडे सैटरडे या इस वीकेंड पे बच्चों के लिए ये स्पेशल करेंगे. और सबसे अजीब बात, वो वीकेंड बहुत लंबा होता था. आज का वीकेंड देखिए, फ्राइडे मॉर्निंग होती है, ब्रेकफास्ट करते हैं, फोन मैसेज, ग्रॉसरी, थोड़ा सा काम, आउटिंग, इंस्टाग्राम, डिनर, और फ्राइडे खत्म हो जाता है एंड सडनली सैटरडे आ जाती है, और सडनली सैटरडे नाइट भी आ जाती है. अरे वीकेंड खत्म हो गया? टाइम एक्चुअली बहुत तेज नहीं हुआ है, हमारी लाइफ में नोवेल्टी कम हो गई है. बचपन में एक छोटी सी चीज भी इवेंट होती थी, नया टॉय मिल गया, कोई नई मूवी देखने के लिए मिल गई, कोई नया दोस्त बन गया, किसी नई जगह पर चले गए. बड़े होकर ना हमारी लाइफ थोड़ी सी रूटीन से बाहर चली गई है, और अब तो लगता है कि यार शायद वीकेंड को थोड़ा सा लॉन्ग करने के लिए ना 24 आवर्स और चाहिए, बस कुछ नया करने के लिए. इस वीकेंड एक नई जगह जाइए, नया ब्रेकफास्ट कल मॉर्निंग में ट्राई कर लीजिए, किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लीजिए, और देखिए शायद ना संडे आते आते आपके पास एक नई मेमोरी भी हो जाएगी. सो यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. यू टेल मी कि आपका क्या खास प्लान है आज फ्राइडे को. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा.

घर में ना एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, एक आवाज आती है दूर से कि अरे आज कुछ नहीं कर रहे हो। और ऑनेस्टली कुछ नहीं करना हमारे सोसाइटी में ऑलमोस्ट मतलब ऐसे कुछ बुरी चीज जैसे है। आप सोफे पर बैठे हो, कोई काम नहीं है, आप पढ़ो हो, मतलब बस बुक ही पढ़ रहे हो, सोना चाहो, कितना सोगे भाई, जैसे हर मिनट में आपको अटेंडेंस लगाना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट है, और चलिए रिपोर्ट छोड़ते हैं, एक किताब है द आर्ट ऑफ रेस्ट, एक इंटरेस्टिंग आइडिया एक्सप्लोर करती है ये किताब। रात का मतलब सिर्फ स्लीप नहीं होता, किसी के लिए रेस्ट रीडिंग है, किसी के लिए म्यूजिक, किसी के लिए नेचर, किसी के लिए सॉलिट्यूड, और किसी के लिए लिटरली घर में रहकर किसी से बात ना करना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेस्ट को रिवॉर्ड बना देते हैं, पहले सारा काम खत्म होगा फिर रेस्ट करूंगी, लेकिन काम कभी कंप्लीटली खत्म होगा ही नहीं। ईमेल्स आती जाती रहेंगी, लॉन्ड्री होगी, किचन होगा, टू डू लिस्ट होगी, काम तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। तो अगर रेस्ट को काम के खत्म होने का प्राइस बनाएंगे तो रेस्ट कभी मिलेगा ही नहीं। सो इस वीकेंड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद से पूछिए मुझे एक्चुअली किस चीज़ से रेस्ट मिलता है, और वही कीजिए गिल्ट के बिना, क्योंकि कभी कभी मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ वही होती है जो आप बिना किसी गिल्ट के करते हो। आपके लिए रेस्ट स्लीप हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, नेचर या फिर सॉलिट्यूड हो सकता है, या फिर कोई मूवी देखना भी हो सकता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

सो कुछ एक्टर्स ना स्क्रीन पर सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो हमारी पूरी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। आज ऐसे ही एक एक्टर की याद आ गई मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए। सो टुडे इज ऋषि कपूर्स बर्थ एनिवर्सरी। यस, 4th of September उनका बर्थडे होता है। और उनकी जर्नी को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद ये होगा, ही ग्रू अप एंड बॉलीवुड ग्रू अप विद हिम। बॉबी में वो यंग रोमांस का फेस थे, कर्ज में म्यूजिक मिस्ट्री और करिश्मा, चांदनी में रोमांस का क्लासिक चैप्टर, और फिर वक्त बदला, दो दुनी चार में ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हस्बैंड, अग्निपथ में एक कम्प्लीटली डिफरेंट शेड, कपूर एंड सन्स में एक कम्प्लीटेड यू नो कॉम्प्लिकेटेड इंसान, और इम्पैक्ट फैमिली मैन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ एक्टर्स अपनी यूथ को होल्ड करके रखना चाहते हैं, ऋषि कपूर ने स्क्रीन पर एज को एक्सेप्ट किया। हीरो ही मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स बनाता है, और हीरो कैरेक्टर बनाने का ट्रांजिशन जो है वो उन्होंने ही किया, और ऑडियंस ने उन्हें हर स्टेज पर एक्सेप्ट भी किया। शायद इसीलिए उनकी फिल्म देखते हुए हम सिर्फ एक्टर को नहीं देखते थे, अपनी भी कोई पुरानी एज याद कर लेते थे। सो आज फ्राइडे के मूड में थोड़ा बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया हो जाए, ऋषि कपूर की कौन सी ऐसी मूवी है जो आपके लिए सबसे स्पेशल है? बॉबी, कर्ज, चांदनी, दो दुनी चार, अग्निपथ या कपूर एंड सन्स, या कोई और मूवी आपको याद है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सो टुमारो इज टीचर्स डे राइट, और स्कूल में तो हम सब ने टीचर्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। भाई मैं तो सारे टीचर्स के लिए, स्पेशली अपनी क्लास टीचर के लिए ग्रीटिंग बनाकर जाती थी, और अपने फेवरेट टीचर्स के लिए बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड लिख के। लेकिन बड़े होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज समझ आती है, लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमेशा क्लासरूम में नहीं होते। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। कभी मम्मी ने सिखाया कि मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहना है, पापा ने सिखाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाम की एक चीज होती है, किसी दोस्त ने सिखाया कि ट्रस्ट क्या होता है, किसी बॉस ने सिखाया कि किस तरह का बॉस कभी नहीं बनना, और कभी कभी तो फेलियर, कभी यू नो सक्सेस, ये सब हमने किसी ना किसी से सीखी होती है। इंडिया में टीचर्स डे जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है, बट जब उनके स्टूडेंट्स और यू नो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे तो उन्होंने सजेशन दिया कि इस दिन को टीचर्स के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाए। मतलब कितना ब्यूटीफुल थॉट था वो, अपने बर्थडे को खुद सेलिब्रेट करने की बजाय उन लोगों को सेलिब्रेट करना जो नॉलेज शेयर करते हैं। सो आज एक नाम याद कीजिए, स्कूल टीचर या कोई ऐसी टीचर जो आपको याद है, और आपकी लाइफ का वो इंसान जिसने आपको कोई ऐसा लेसन दिया जो आज भी आपके साथ है। नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल टेक हेयर ऑन एयर। सो 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है हैप्पी वीकेंड।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: अनमैच्ड चार्म, किलर डांस मूव्स और फुल ऑन एनर्जी,
3: सोचेंगे तुम्हें प्यार।
2: ये सब सुनकर जिसकी याद आए वो है चिंटू जी, यानी ऋषि कपूर।
4: राधा बोल।
2: आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर डफली से लेकर गिटार तक ऋषि जी की स्टाइल में सब सुनाई देगा रेडियो ऑलिव पर।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं फ्राइडे मॉर्निंग और उसके बाद अब तो शाम भी हो गई. सो आपका वीकेंड ना आपके सामने है, थोड़ा सा बचा हुआ है, आई नो दैट. सो ऑप्शन नंबर वन है कि मैंने पूरा प्लान बना रखा है, ठीक है, फ्राइडे को ये करना था, ब्रेकफास्ट जाना था, फिर मॉल करना था, एंड देन ग्रॉसरी लेने के लिए जाना था, शाम को दोस्तों के साथ प्लान, फिर रात को मूवी का भी प्लान. और कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर दी प्लानर. और ऑप्शन टू कि आप हमेशा यही बोलते हो कि यार फ्राइडे को देखेंगे, कहीं चल लेंगे, और यू आर द एक्सप्लोरर. मतलब ऑप्शन थ्री ये है कि मैं घर से नहीं निकल रही, मुझे मेरे सोफे पर बैठना है और आराम करना है, और ग्रॉसरी वो तो आ जाएगी यार ऑनलाइन 10 मिनट में. सो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है. और फोर्थ वन है कि फ्राइडे को कोई प्लान नहीं, सैटरडे को भी नहीं, और फिर सीधे संडे मॉर्निंग ऑफिस जाएंगे. गाइस व्हाट आर वी डूइंग टुनाइट, वो सैटरडे को पूछते हैं कि यार कल सुबह से ऑफिस जाना है, चलो थोड़ा टाइम बचा है. दिस इज द लास्ट मिनट वीकेंड पर्सन. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा आइडियल वीकेंड सिर्फ आदत नहीं बताता, इट टेल्स अस कि हम अपनी एनर्जी कैसे रिचार्ज करते हैं. कुछ लोग लोगों के बीच रहकर रिचार्ज होते हैं, कुछ लोग क्राउड से निकलकर रिचार्ज होते हैं, कुछ लोगों को एडवेंचर चाहिए तो कुछ लोगों को साइलेंस चाहिए. इसीलिए अगर आपका फ्राइडे जो है ये फ्रेंड्स के साथ या घर से बाहर निकलकर आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार घर पे रह के बढ़िया लगता है, सब कुछ तो घर पे आ जाता है, और कतर में स्पेशली हम सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रॉसरीज, यू नो, हाउस हेल्प, एवरीथिंग. सो किसी की पर्सनालिटी रॉन्ग नहीं है, बस बैटरीज चार्ज होने का मेथड अलग अलग है. सो यू टेल मी कि आप कौन से प्लानर हो, एक्सप्लोरर, प्लानर, या फिर होम बडी, या फिर लास्ट मिनट वीकेंड पर्सन. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063, और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

एक सेंटेंस जो दुनिया की सबसे डेंजरस शॉपिंग सेंटेंस में से एक है, मैं कुछ खरीद नहीं रही हूँ, बस देखने जाऊंगी, और फिर एक बैग, फिर दूसरा बैग, और घर आकर एक्चुअली ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था वाली फीलिंग। सो आज फ्राइडे है एंड आई वॉज थिंकिंग कि फैशन और लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करना अगर आप चाहते हो तो अरेबियन वुमेन एग्जीबिशन का फाइनल वीकेंड चल रहा है DECC में, जहां पर 200 से ज्यादा इंटरनेशनल डिजाइनर और लाइफस्टाइल ब्रांड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी है मतलब, लेकिन मुझे एग्जीबिशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है शॉपिंग का साइकोलॉजी एंगल। हम अक्सर ना चीज तब नहीं चाहते जब हम एक बार उसे देख लेते हैं। अगर आप घर से निकले और बिना किसी प्लान के, फिर आपने परफ्यूम देखा, फिर आपने कोई अच्छा सा ड्रेस देखा, फिर आपने कोई बैग देखा, और सडनली ब्रेन बोलता है कि ये तो मेरी पर्सनालिटी है, मतलब ये तो मुझे चाहिए ही, एक्चुअली ब्राउजिंग इटसेल्फ डिस्कवरी क्रिएट करता है, और इसीलिए शॉपिंग कभी कभी ना प्रोडक्ट से ज़्यादा पर्सनालिटी के बारे में होती है। सो ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि शॉपिंग करते वक्त आप लिस्ट फॉलो करते हो या फिर लिस्ट आपको फॉलो करती है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, और अगर अभी तक नहीं गए हैं तो यू कैन गो टू DECC, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, और ये है हैप्पी वीकेंड।

हमारे फोन में कितनी फोटोग्राफ्स हैं? 500, 2000, 5000। और अगर फोन आज आपसे कहे कि सिर्फ एक फोटो रख सकते हो, बाकी सब यू हैव टू डिलीट, तो कौन सी रखोगे? आपको पता है इंटरेस्टिंग क्या है, हम अक्सर टेक्निकली परफेक्ट फोटोग्राफ को फेवरेट नहीं बनाते। कभी फोटो ब्लरी होती है, लाइट्स खराब होती हैं, कोई आंख बंद करके खड़ा होता है, लेकिन फिर भी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोग्राफ की वैल्यू जो है वो पिक्सल में नहीं होती, यादों में होती है। और इसी वीकेंड दोहा में फ्रेम्स एंड फोकस एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है, जो कि फोटोग्राफ्स के वर्क्स के साथ, जहां आइडेंटिटी, मेमोरी, बिलोंगिंग, हेरिटेज और माइग्रेशन जैसे थीम्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए गए हैं। फोटोग्राफ का मैजिक ये है कि कैमरा ना सिर्फ एक सेकंड कैप्चर करता है, लेकिन व्यूअर उस सेकंड का अंदर पूरी कहानी इमेजिन कर रहा होता है। एक आदमी विंडो के पास खड़ा है, ठीक है, हम नहीं जानते कि वो किस वक्त किसका वेट कर रहा है, लेकिन हम स्टोरी बना देते हैं कि ये विंडो के पास ऐसा था, ये था, वो था। शायद फोटोग्राफी का असली मैजिक वही है, पिक्चर जो नहीं बोलती वो भी बहुत कुछ कह जाती है। सो आपने फ़ोन का कैमरा जो है वो कैमरा रोल खोलिए एक्चुअली, जिसमें जो सारी फोटोग्राफ्स हैं, और मुझे बताइए कि अगर सिर्फ एक फोटोग्राफ बचानी हो तो वो कौन सी होगी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और ये हैप्पी वीकेंड।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: सो कभी आप एग्जीबिशन में गए हो और वहां जाकर रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो कुछ लेना ही नहीं था? एग्जैक्टली, दोहा ट्रेड फेयर का फाइनल वीकेंड भी चल रहा है DECC में। 20 से ज्यादा कंट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, फैशन, परफ्यूम, होम डेकोर, फूड, एसेसरीज, बेसिकली वो सब चीजें जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि बस देखने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एग्जीबिशन का एक और एंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मार्केट में हम यूजुअली नीड के साथ जाते हैं, एग्जीबिशन में हम क्यूरोसिटी के साथ जाते हैं, और क्यूरोसिटी का कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं होता। आप मोरक्कन डेकोर देखते हो, आप इंटरेस्टिंग परफ्यूम स्मेल करते हो, कोई अनयूजुअल हैंडीक्राफ्ट देखते हो, और सडनली दुनिया थोड़ी सी बड़ी लगने लगती है। आपको लगता है यार कि इस जगह पर ये सब चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ब्राउजिंग इज नॉट ऑलवेज बाइंग समथिंग, ब्राउजिंग इज डिस्कवरिंग एक्चुअली समटाइम्स। सो शायद इसीलिए एग्जीबिशंस का चार्म ना मॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है, और मुझे एग्जीबिशंस अटेंड करना बहुत पसंद है। मॉल्स में आप जानते हो कि क्या चाहिए, एग्जीबिशन में कभी कभी आपको पता चलता है ओह मुझे ये बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्ट कन्फेशन टाइम है यहाँ पे। एग्जीबिशन में आप सबसे पहले क्या देखते हो, खाना, फैशन, होम डेकोर, या वो रैंडम चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी घर आ गई हैं? बाय द वे फॉर मी इट्स होम डेकोर। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को, अपने रूम को, अपने बेड को सजाना। सो यू टेल मी योर चॉइस। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: इमेजिन करो आपके पास एक लाइब्रेरी है, लेकिन उस लाइब्रेरी में बुक्स नहीं, आपकी जिंदगी के डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक बुक खोलते हो और उस लाइफ में आपने वो जॉब चूज की है, दूसरी बुक खोलते हो आपने वो रिलेशनशिप कंटिन्यू किया है, तीसरी किताब में आपने किसी और सिटी में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया है, और हर बुक में डिफरेंट यू। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैट हेक की नॉवल द मिडनाइट लाइब्रेरी का है। स्टोरी है नोरा नाम की एक वुमन के अराउंड, जो अपनी लाइफ के चॉइसेस को लेकर रिग्रेट करती है, और उसे एक मिस्टीरियस लाइब्रेरी मिलती है जहां वो अपनी अनकाउंटेबल पॉसिबल लाइफ्स एक्सप्लोर कर सकती है, जो उसकी लाइफ में हुआ भी नहीं है। और सुनने में तो ये फैंटेसी सी लगती है, लेकिन बुक का असली सवाल बहुत रियल है। अगर मुझे अपनी लाइफ के सारे व्हाट इफ्स देखने को मिल जाएं, तो क्या मैं एक्चुअली हैप्पियर हो जाऊंगी? क्योंकि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स रहता ही है। मतलब हम सोचते हैं कि काश ये हो गया होता, काश वो हो गया होता, अगर मैं वो जॉब ले लेती, तो अगर मैं उस इंसान को हाँ बोल देती, या फिर अगर मैं उस शहर चली जाती, या अगर मुझे ये मौका ना मिला होता। लेकिन इंटरेस्टिंगली लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने रॉन्ग चॉइस किया, प्रॉब्लम ये है कि हम राइट चॉइस की इमेजिनरी परफेक्ट वर्जन से अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हैं। सो और द मिडनाइट लाइब्रेरी के ब्यूटीफुल थॉट ये है कि मे बी अ परफेक्ट लाइफ डजंट एग्जिस्ट, मे बी अ मीनिंगफुल लाइफ इज द वन यू एक्चुअली चूज टू लिव। सो इस फ्राइडे रिलैक्स्ड मूड में एक छोटा सा थॉट और एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ऑल्टरनेट वर्जन देखने का चांस मिलता, तो आप किस डिसीजन का व्हाट इफ देखना चाहोगे? करियर का, लव का, सिटी का, ट्रैवल का, या कोई बिल्कुल छोटा सा डिसीजन? व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा, क्योंकि समटाइम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइफ इज नॉट द वन यू कुड हैव लिव्ड, इट्स द वन वी आर लिविंग राइट नाउ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नंबर है 3311063। मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
5: कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
0: Ab suniye, Olive ka Zabardast Hai.

शो के एंड में एक थॉट छोड़ना चाहती हूँ। कभी कभी हम वीकेंड को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने लोग मिलेंगे, क्या पोस्ट करना है, क्या डिनर होगा, और फिर संडे को जब कोई पूछता है वीकेंड कैसा था तो हम कहते हैं कि अच्छा था बस। लेकिन कुछ वीकेंड्स ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ अलग होता है। मे बी एक स्पॉन्टेनियस ड्राइव, किसी दोस्त के साथ 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन, फैमिली डिनर जहाँ सब एक साथ थे, किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक, किसी पुराने गाने का सडनली बजना, बस एक शाम और कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। फिर भी दिल बहुत हल्का था। मेमोरी को सिर्फ इवेंट नहीं चाहिए, मेमोरी को इमोशन और मीनिंग चाहिए। इसीलिए वीकेंड एक परफेक्ट वीकेंड बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस मेमोरेबल वीकेंड को याद रखिए कुछ नया करके, कुछ नए लोगों से मिलके, कुछ नए और अच्छे एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि आपको बहुत टाइम से एक्सरसाइज करने जाना था, जिम जाना था, स्विमिंग ट्राई करनी थी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, और आप के पास एक अच्छी कहानी होगी। सो आई विल से कि आपकी लाइफ का वो कौन सा वीकेंड है जो आज भी आपको बिल्कुल कल की तरह याद है। नाम के साथ मैसेज कीजिए और बताइए 3311063 पर। फॉर नाउ आई हैव टू से कि हैप्पी वीकेंड, और इस वीकेंड कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो संडे तक नहीं बहुत सालों तक याद रहे। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
1: Radio Olive 106.5.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: It's time to party.

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये मेरा पहला गाना है बॉलीवुड में। दिस इज कंपोज्ड बाय मिथुन शर्मा, लाइक लिटरली माय फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री एज अ प्लेबैक सिंगर।